रंगोली तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग झरोखा। सुनिए लिखा जोखा आज विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। श्री रामचरितमानस कांड का 198वां भाग सुनवाया जाएगा आपसे कुछ देर बाद 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिम्हन, आज दूसरी कड़ी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। आज जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के याद का दिन है। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दिन में 11 बजे सुनिएगा विविधा। विविधा के अंतर्गत हास्य नाटिका होगी सास बहू और हेलो फरमाइश, लेखक निर्देशक यूनुस खान। व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है, अभिनय नरोत्तम बीन। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी सुनाई जाएगी। 2:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे मनचाहे गीत सुनिएगा। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक चंदन वृक्ष, उषा सक्सेना ने इसे लिखा है, निर्देशक रमा अरुण त्रिवेदी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां और आखिरी भाग सुनवाया जाएगा आज शाम 4 बजे। शाम 5 बजे छाया गीत सुनिएगा। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा कर्नाटक संगीत पद्धति के राग भाग 2, कलाकार शकुंतला नरसिम्हन। शाम 7 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा, इस श्रृंखला में महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकी जाकू केंगुर से की शौर्य गाथा सुनवाई जाएगी। 7:45 पर साज और आवाज कार्यक्रम में सुरेश यादव की बजाई फिल्मी धुने सेक्सोफोन पर और फिर वही फिल्मी गाने। रात 8 बजे हवा महल में झलकी सुनिए मैरिज एनिवर्सरी, हरि नारायण शर्मा ने इसे लिखा, एचएस व्यास का निर्देशन। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा। 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे विविधा सुनिएगा, हास्य नाटिका सास बहू और हेलो फरमाइश। और इसके अलावा विविधा के अंतर्गत व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। सुनते रहिए विविध भारती, देश की

बता दें सुबह 9:30 और रात 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। आज है मजरूह की याद का दिन।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोतागण नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसा राग के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे एक तरीके से मॉडर्न या आधुनिक कहा जा सकता है। कुछ राग ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हजार वर्ष के पूर्व प्रसिद्ध हैं और थे, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना हाल ही में हुई थी। कतन कुतूहलम इसी प्रकार का एक राग है। पटनम सुब्रमण्य अय्यर, जो एक वाद्यकार थे, करीब 100-150 साल पहले इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में शामिल किया था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासक राज करते थे और विलायती बैंड संगीत सुनने को मिलता था। पटनम सुब्रमण्य अय्यर ने इस राग को पाश्चात्य बैंड संगीत की शैली में बनाया और स्वर इस प्रकार लगते हैं।

ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ पाश्चात्य धुन बज रहा हो। लेकिन यह बताना जरूरी है कि वेस्टर्न बैंड संगीत पर आधारित होते हुए भी राग कतन कुतूहलम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पद्धति का ही एक नमूना माना जाता है, अर्थात इसको अच्छी तरह शामिल कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पाश्चात्य संगीत की झलक इसमें होने के कारण इसे शास्त्रीय कोश में शामिल नहीं कर सकते। भला कर्नाटक पद्धति हो या हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत हो, हमारी भारतीय प्रथा में सदा दूसरी सभ्यताओं में से कुछ अंश ग्रहण करके अपना लेना और उसे एक भारतीय रूप देकर उसकी शोभा बढ़ा देना, यह हमारी विशेषता है, हमारी परंपरा की विशेषता है, हमारी कला की विशेषता है। तो आइए अब सुनते हैं राग कतन कुतूहलम में शेष गोपालन की आवाज में मुत्तैया भागवतर की एक रचना। यह कृति आदि ताल में है, अनुपल्लवी के बाद अर्थात अंतरा के बाद एक चित्तस्वरम यानी बंदिश सरगम जुड़ा हुआ है, जिसमें आप राग कतन कुतूहलम का स्वरूप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सुनिए विद्वान शेष गोपालन की आवाज में राग कतन कुतूहलम में मुत्तैया भागवतर की एक रचना।

अर्थात इसमें लगने वाले स्वर शुद्ध हैं। यह 29वां मेलकर्ता राग धीर शंकराभरणम से जन्य है, तो स्वर शंकराभरणम के अर्थात बिलावल के शुद्ध स्वर लगते हैं। राग कतन कुतूहलम का चलन इस प्रकार है।

0: রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে, আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন পর্যায়ক্রমে দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সমাচার প্রভাত এবং মর্নিং নিউজ রিলে করে শোনানো হচ্ছে। এর অব্যবহিত পরেই শুনবেন শিলং কেন্দ্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইংরেজি সংবাদ।
1: वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
5: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
6: Expanded commercial ties.
7: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक

0: व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: We all know that under the visionary...
3: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
2: Certainly we'll be able to get the success.
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
7: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर

0: विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
2: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में

0: তীব্র থেকে প্রচারিত হিন্দি এবং ইংরেজি নিউজ বুলেটিন রিলে করে শোনানো হচ্ছে। এর অব্যবহিত পরেই শুনবেন মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে লভলিন নিগম। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल पर ही पासी के एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशन तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरविंदर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़,

फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: जॉन अब्राहम, मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें? राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सैफ।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मशहूर सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एस डी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरूह के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: न कह सकता।
1: 24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती।

0: बोला एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
0: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
1: जी जी।
0: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
1: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और ये ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
0: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
1: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
0: क्या बात।
1: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पर गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
0: अरे
1: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था। रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत से लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुसवाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती में आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
0: अरे वाह।
1: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था। तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, अब बजा तो कोई नहीं था। हाँ। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-2-3-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
0: चबूतरे में हुआ,
1: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
0: वाह।
1: तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
0: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
1: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है। तो बसारी के आगे है पहरा।
0: ओके।
1: बहुत ही छोटा था गाँव है सर। बहुत
0: ही। कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
1: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजा ओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजा ओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे,

0: खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: सॉन्ग
1: है।
0: था उसका।
1: अच्छा जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
0: उस पे
1: लोकगीत?
0: ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगे तुंगरिये, क्या
0: उंगरिया बता
1: बात
0: ना,
1: है।
0: कहाँ ले आए राजा की
1: क्योंकि
0: पहाड़िया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड,
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, ये
1: हाँ

0: ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं। तो
1: मजा आ गया मुझे
0: बहुत ही मजा आया, बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली। फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ,
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा।
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे
0: और
1: बाप
0: मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हमारे छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे।
1: हाँ।
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
1: तो बुंदेली में था ये।
0: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा।
1: हाँ।
0: तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूं। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूर ही है। तो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफी बड़े एक्टर
1: हैं, पन्ना के ही है,
0: जो पन्ना के ही है। तो वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा। तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहां पे 1 महीने रहना है। तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है, इन्हें कहीं देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना या मैं कहां सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूं, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है,
1: तो डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख लिया अभी मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहां
1: अभी आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी,
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी।
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, गाना सुनता तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए। तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है।
1: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके।
0: जी जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को।
1: वाह,
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देख

0: ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो भी
1: बात है,
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है
1: जी, जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहां पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूं तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि

0: मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा, फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
1: हाँ वो छोटा वाला,
0: छोटा वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, एक्सेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
1: अरे गजब,
0: और तुम अनुशासित हो।
1: 1 मिनट में सब बोल
0: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो मैं कॉलेज में, इस शहर में था,
0: छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनाग नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको? कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हेमंत भाई,
1: बिल्कुल
0: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
0: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर है वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद में एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूं, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल,
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया,
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदेले हो, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आने गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पा पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में।

0: बहुत नाम है मेरे कॉलेज में, पूरे लोग जानते हैं।
1: हाँ।
0: आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं। उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने,
1: वाह वाह
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मोखा मिला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: कहते हैं देवेंद्र।
0: उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे।
1: हाँ।
0: छाप है। तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया वो ले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस खाना हो गया,
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चढ़ाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीज, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो। मैं यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा।

सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया, सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था,

0: ऐसे में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे क्यों रूठे किनारे क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने की शुरू किए, क्योंकि मैं पढ़ता था भावे लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना
0: दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। अगले
1: को यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहाँ कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना है।
1: बहुत
0: ही सुंदर गाना है, बहुत सुंदर गाना है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा, तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है।
0: वो
1: तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटी नहीं है।
0: हाँ।
1: वो तो मैं, मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को।

0: मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: ओके okay.
0: तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया,
1: और वहीं वो
0: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर जी?
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ।
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, बोले यार ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे तो वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग जैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग इसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये बहुत
0: मैं बता रहा हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ,
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके। मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
1: शक को सा बोल रहे हो,
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया। जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था, जिसमें मैंने सा वो सही बोला था, शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था इतने दिन से तुमसे, यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके.
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुज खुटवर सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5 घंटे कम से कम स्टेज पे है, और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सबको उसको करना है, मैनेज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूं, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला, और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया, सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो, तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे ही लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूं, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूं, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूं, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस का दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
0: जब दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था, जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया,
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजन लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ, जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैच

0: मिनट से सीखते हैं।
1: वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी, पूरा ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस

0: मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था 12 बजे के आसपास, एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ। फिर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है। मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ, कुत्ते मेरे आसपास पहुँच रहे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे। मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया। अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहां हर हाल में पहुंचना है जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे। फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे। वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छत्र वो केंद्र है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो क्योंकि रेडियो को बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया। हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी कबीरी बता देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के
1: बदल दी।
0: उस पर ये कहानी है, हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई

0: बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है,
0: पै पै पै बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै बहुत जोर से प्यार लगा है। सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, बढ़िया गाना है। कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडिया हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे

0: गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जांपल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी। जिग्गी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत, मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था। और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
1: ना।
0: अच्छा वो गाना कुछ ऐसा था वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो भूख में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुनके
0: ले रही ऐसे हैं मतलब,
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: तो
1: और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी जी।
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था, आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल।
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल।
0: मैं बड़ा मिस करता हूं इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं काफे कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आपके साथ बैठा हुआ था।
1: सफर है,
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता

0: ढूपर है ढूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, विचारा

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: और मंदाकिनी जोशी का
1: नमस्कार। मंदाकिनी जी,
0: सन
1: 2026 कुछ ऐसे शुरू हुआ है विविध भारती में कि उसकी बात ही कुछ और है। हर महीने एक आयोजन होता है जिसका नाम है सृजन भारती, और ये जो सृजनात्मकता की ये लहर चली है, इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था जहां दो नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी?
0: सास बहु और हेलो फरमाइश।
1: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
0: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहु और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रिकर।
1: आइए सुनते।
2: हेलो
3: हेलो फरमाइश।

0: पार्टीवर हिरो
1: आई सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: मैं हूँ सामने मेरे सामने।
3: समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है। देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर
4: मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी।
3: अरे बहू बहू हाँ। मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने। कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू हाँ। डायरी ला कर दे मेरी।
5: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही हैं ना वो होगा नहीं। हाँ
3: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है। अच्छा बता कौन सा काम है।
5: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
3: है।
5: अब हम तो क्या पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
3: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी। किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ। ये हेलो फरमाइश है, विविध भारती का हेलो फरमाइश। बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
5: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और न ही लगेगा, देख लेना। हाँ
3: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर। दे दिया कर पर हमेशा देर कर देती है तू।
5: हाँ सासू माँ मैं देरी करती नहीं, देर हो जाती है आपके पुकारने से पहले।
3: दफा हो जा नौटंकी,
5: मेरी जल जाती है।
3: दफा हो जा और जल्दी से नाश्ता ले आ। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02225467।
5: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
6: द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम।
5: कहा था ना हमने सासू माँ कि फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगे ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको सुनो, आइडिया सासू माँ एक आइडिया। एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
3: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर।
5: क्यों
4: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर।
5: क्यों क्यों क्यों क्यों
4: क्यों क्यों क्यों क्यों बड़ा कौन
5: आप,
4: सास कौन
5: आप,
4: तो सुनीता कौन
5: आप,
4: तो अनाउंसर बनेगा कौन।
5: ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट। हाँ एक मिनट फिर से कर दें। अच्छा बताइए सुनीता देवी कौन।
3: मैं।
5: और विविध भारती की फैन कौन।
4: मैं।
5: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है।
4: मैं।
5: तो कॉलर बनेगा कौन।
4: मैं।
3: करम जली दास पीटी, ऐसा नहीं होगा।

0: नहीं, देख तू बहू है, बहू की तरह रह।
1: अरे बहू, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने।
2: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है। वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
0: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी?
1: तुम लोग उसे तो बस बहस करवा लो।
2: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना, चलिए ना पिताजी प्रैक्टिस करते हैं ना।
1: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
2: अरे पिताजी वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है? हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन।
2: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा। हमने आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं। बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आप अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
1: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
2: पिताजी वो हेलो फरमाइश
1: पति को बोलने देती है ना, ससुर को ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
0: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर। इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला?
1: तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरे करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
3: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
1: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा, स्टूडियो के बाहर का नजारा यहां से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ, एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार। इस बीच रिंग टोन बजती है।
0: सुनो जी,
1: हेलो,
0: सुनो जी चुप रहो, बकवास बंद करो, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने, सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
1: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल,
0: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
2: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
1: शट अप,
0: शट अप। बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हो विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह, अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या है? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
4: देवा देवा, मी किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही, काय झालं, तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला, तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
0: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
4: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं, मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से।
0: जलगांव से।

0: निगाह से।
1: पहले पहले तो ये बोलो, तुम तो फोन का भी स्वागत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं?
0: क्या
1: मैं कितनी बार फोन करता है?
0: अरे
1: अरे आने की मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
0: क्या
1: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू?
0: अरे
1: अरे यानी कि आपने अपनी मशीन को क्या कर रखा है?
0: ये अनुवाद भी कर रही है।
1: अरे तुम्हारा लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
0: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
1: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
0: वो क्या है ना,
1: बहाने बनाओ उनका।
0: क्या है ना?
1: यानी कि बहाने मत बनाओ।
0: हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: अरे आधीच सांगितलं होतं मी।
0: फिर मराठी?
1: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
0: अरे अनुवाद देखा
1: मी, मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
0: अरे
1: मृणमयी मई, मैं जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ, समझा?
0: समझा समझा समझा। मृणमयी, मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
1: अरे बाबा, मृणमयी नहीं, मृणमयी।
0: बापरे,
1: आया क्या समझ में? यानी कि मृणमयी।
0: अरे सुनिए सुनिए, मृणमयी मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
1: आता तुम्ही मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
0: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
1: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
0: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
1: बहुत बकवास
0: है,
1: एकदम एकदम बकवास जा रहा है। एक तो मैं 2 साल से लगा रही हूँ।
0: हाँ।

0: घर यार का असको की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया, अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको?
0: हाजी हाजी ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हमें एक और गाना सुनवा देते हैं आपको।
1: हाँ,
0: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है,
1: नाता
0: ये
1: है।
0: नाता है।
1: अरे मिस्टर ऑल इन वन, अरे मिस्टर ऑल इन वन,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: सुनिए तो सुनिए,
0: कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, अजी वाह वाह तो कीजिए, मिटाने

0: Mi piare careta.
1: Cardi scafon. Dice mi piare careta. गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं ये तक क्लियर नहीं है इसका. ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक. ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार. मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है. अरे फिर बजने लगी घंटे. अब क्या करूं. फिर लेती हूँ कॉल. हेलो हेलो फरमाइश. हेलो जी मैं समता सिंह बोल रही हूँ. आप कौन बोल रहे हैं जी.
2: बोल नहीं रहे हैं है? बोल रही हूँ.
1: अरे बापरे. जी हाँ हेलो फरमाइश बताइए.

0: ये आपको कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: आप हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
0: हाँ
1: हेलो गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
0: बात? हाँ हाँ कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
1: मैं पुणे से मनीषा बोल रही हूँ, मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
0: है सास की शिकायत?
1: हाँ,
0: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
1: तो क्या हुआ, आप लोग हमेशा कहते हैं ना कहीं अपने दिल की बात
0: है,
1: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है खड़ूस कहीं की।
0: अरे अरे अरे अरे ऐसा नहीं बोलते, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
1: गलत फहमी? अच्छा बताओ किसकी सास है, आपकी या मेरी?
0: आपकी।
1: तो सच किसे पता होगा?
0: आपको।
1: तो कौन बोलेगा
0: आप?
1: और सुनेगा कौन?
0: आप मेरा मतलब मैं सुनूंगी।
1: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
0: कहाँ से आ गई है कॉलर? हाँ
1: देखो अब मुकर नहीं सकती आप।
0: हाँ
1: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
0: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
1: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
0: हाँ
1: मेरी सास खड़ूस है।
0: हाँ,
1: वो मुझे सताती हाँ, है।
0: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
1: चुप चुप, बोलो हाँ वरना।
0: हाँ हाँ भाई हाँ,
1: उसकी
0: हाँ,
1: कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ।
0: आप गाने की फरमाइश कीजिए ना, हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही है, कहाँ से आ गई आप?
1: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ
0: हाँ हाँ हाँ।
1: घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
0: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
1: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
0: हाँ
1: तो अब सारे काम सास से करवाने चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
0: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
1: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
0: अरे हाँ हाँ हाँ।
1: हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए।
0: हाँ
1: बोलो हाँ।
0: नहीं पर हाँ।
1: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
0: अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया रे बाबा। हाँ हाँ हाँ।
1: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
0: अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
1: हेलो
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब ना से रोग हरे से पीरा, ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकट हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काट देती हूँ, फोन काटने देती हूँ, बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है। मर्ज करम जली नास पीटी, मर गए, ये मैं कहाँ फंस गई थी। ओफो मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो अरे बाप रे, ये कॉल लूं कि नहीं लूं? हम लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
1: सासू जी आठ बज गए हैं, उठ जाइए ना।
0: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
1: हाँ समता सिंह, अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
0: आप कौन बोल रही हैं?
1: हे भगवान क्या हुआ है इन्हें, बताइए कौन सा गाना, अरे क्या कह रही है ये?
0: बताइए मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
1: हाँ?
0: आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
1: हे भगवान लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को। ये लो छुपा।
0: अरे ये क्या क्या डाला करप जली नाक पीटी, ये क्या क्या मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
1: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह है, ये क्या था सब?
0: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
1: हेलो फरमाइश का सपना?
0: हाँ पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा।
2: सौ सौ साल पगलाओ
1: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
1: सासू जी।
2: सौ सौ साल पगलाओ हमारी

0: सासू जी।
1: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
2: हेलो
3: फरमाइश।
4: था प्रहसन सास बहू और हेलो फरमाइश जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
5: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
4: जी हाँ।
5: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
4: और इसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। तो मंदाकिनी जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
5: बिल्कुल
4: हाँ। और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था, और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
5: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी।
4: जी, जी,
5: और
4: जी।
5: हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाया भी करते थे।
4: चलिए इसका मजा लेते हैं।

जनता की विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप। पहली बार देखी अशोक कुमार को गद्दार के रोल में, आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप।

ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहां क्या था कि अपने यहां तो दो थी, अपने यहां दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहां कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन है, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमे को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और थटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें, ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाईं ओर विष्णु टॉकीज थी।

नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो ये इनाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो।

पूरे करें। और विष्णु में बसती थी अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाए तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उसे कहा जाता कि भाई यार 10 सीगम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, 10 सीगम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था और इस तरह से शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं, ये बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था, कई लोग मजा लेते थे कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे, ये होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आ निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिरपरिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीर कर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था जिसमें 2 होते थे, वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था तब। तो तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था, कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते।

गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के दो मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता। और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। यह कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड एम एन प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, चल। उनके साथी ने इसका सबब पूछा, भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया दो तीन किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर दो समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वह पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थी। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर मां की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूट सहित वापस भी लौटाया जाता। ये संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप्पे, ए लेके जा, उसको समझ नहीं आ रहा क्या उसको? मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर, कुछ लोग जो थे मतलब पहला दिन

और पहला शो इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे। भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माए ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी। मतलब कि बेटा जा रहा है शहंशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी और यह काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, तभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पर चार चार लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले रहे। बाकी बालकनी, बालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ, अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान न होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आ आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अरे सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा, महिलाओं की लड़ाइयां देखी आप लोगों ने कभी टिकट के लिए? मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे बाल पकड़ के, जिसको हम एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई है। ठहाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी ये पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दोनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आंकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की है, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हो और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देख ये टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हो, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती ही बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर

आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे, अरे क्या बैठने दे, अरे कहाँ बैठे, पैसा तो दे दिया, बैठने दो ना, अरे जगह का भैया देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे

ये बेंच है, तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य ये रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था। उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर मनाने का काम करते थे। मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हॉल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी। आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे, क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक दो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है। आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती, जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा, ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है, उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है। कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं। उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें, यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है। यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ NRI किस्म हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू 2 किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद यह हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा

0: लोग अच्छे टैलेंट सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते हैं, मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहाँ जाने जहाँ, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ दे के परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे, जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है, तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना वृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से, सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवर लाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभर कर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है, बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म, दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, एम एस सत्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं, अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और VCD का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो है वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौके की जगह है, हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहां पर भी है, पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला। वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां 3 Idiots ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी। हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय, सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे, घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे, वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीज़ें नहीं बची। तो बस यही है, यह शेयर करने का मतलब यही था, एक दौर जो है हम फिर से जीने, याद करने चीज़ों को, आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है,
1: की सजा

0: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया
1: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
0: जी हाँ,
1: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
0: और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
1: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
0: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, जयंत पात्र।

0: शिखर
1: और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चमन सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

ছোট্ট রং করেছি, ও বাবা মরা করে পড়েছি সারা জোরে, পড়বি পড়।

0: नमस्कार। हेलो अनुरुद्ध।
1: हेलो अनुरोध, नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपको।
1: जी, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट वर्तमान युग में अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखे, तो इसमें दो बात कहना चाहता हूँ।
0: ठीक है,
1: सबसे
0: बोलिए।
1: पहले तो जी, स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि सबसे पहले हमने शुद्ध खाना खाना चाहिए
0: जी
1: और खाना खाने का अच्छा होना चाहिए
0: जी
1: और तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि और खूब पानी हमें पीना चाहिए और अपने
0: जी
1: स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, वो नहीं हुआ दूर करना चाहिए।
0: जी जी जी जी बहुत
1: और
0: अच्छा
1: इससे क्या
0: सलाह आपने दिया हमारे श्रोताओं को।
1: जी, तो क्योंकि अगर हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान हमें रखना चाहिए सबसे बड़ी बात है। और हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हम क्या बोलते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, ये भी हमारे आंखों का नुकसान करते हैं। लेकिन
0: नुकसान
1: सोशल
0: कर
1: मीडिया को
0: जी
1: हम उतना हो सके तो कम यूज करना चाहिए और सोशल मीडिया से हमें थोड़ा दूर रखें। हाँ, जितना
0: बहुत
1: जरूरी हो
0: अच्छा
1: सके उतना हमें फोन चलाना चाहिए और देर रात तक जो है नहीं जागना चाहिए। इससे
0: जी,
1: अगर हम
0: बिल्कुल
1: 6 घंटे की हमें नींद पूरी करनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने श्रोताओं को।
1: जी जी जी जी
0: बोलिए, क्या सुनाओ आज आपको।
1: आज मुझे एक गाना सुना है।
0: बोलिए।
1: फिल्म का नाम है कयामत से कयामत और गाने के बोल हैं, है मेरे हम सफर। हेलो।
0: जी
1: जी, तो ये गाना सुनना है, अगर ये नहीं मिली तो मैं दूसरा बता दूंगा।
0: जी ये गाने हैं हमारे पास।
1: तो ठीक है जी, प्ले कर दीजिए।
0: जरूर,
1: जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी। जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: जी, धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार। हेलो अनुरुद्ध।
1: मैडम जी।
0: हाँ बोलिए।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मेरे इधर बहुत बारिश हो रही है। इस बारिश के मौसम में जैसे कलिंदे हैं, खरबूजा, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, बैंगन है, तुरैया है, लौकिया है, भिंडी है, करेला है, ये चीज़ खाना चाहिए गर्मी के मौसम में मैडम जी।
0: अच्छा बोलिए, पहले तो सीक्रेट कोड बोलिए।
1: सिगरेट कोड बोल दूँ?
0: हाँ जी।
1: जैसे सिगरेट को है सेहत बनाने के लिए, जैसे जैसे पा जैसे पालक खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, खीरा खाना चाहिए, तो सेहत के लिए ये से आपका, मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप बंगाली में बोलती हैं, तो सेहत के ऊपर है सिगरेट को है सेहत बनाने के लिए, ऐसे
0: हाँ
1: कछो
0: ठीक
1: है
0: है
1: सिगरेट
0: ठीक है
1: को। हेलो,
0: ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ
1: हाँ,
0: हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या सुनाओ आज आपको।
1: आज मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है, मूवी का नाम है दिल। गाने बोला है, ओ प्रिया प्रिया तूने क्या भुला दिया है, क्योंकि मेरे दिल तो मैडम जी बहुत गर्मी पड़ रही है और
0: अच्छा
1: बहुत बेहाल हो रहे हैं गर्मी के मारे, और आम भी आ रहे हैं, आम तो आम आप मैडम जी आ जाइए, आपको आम पके पके लाल लाल आम खिलाएंगे।
0: हाँ, बहुत ज़्यादा पानी पिएगा।
1: अब पानी पीना चाहिए,
0: हाँ
1: बहुत
0: पानी
1: ज्यादा
0: पीना
1: पानी
0: चाहिए,
1: पीना
0: फिर
1: चाहिए,
0: आपके उधर
1: और
0: जो,
1: जैसे
0: हाँ
1: बड़ा बड़ा बना
0: इले
1: खाना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, कम से कम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, पानी से ज्यादा ज्यादा पीना
0: नहीं
1: चाहिए,
0: नहीं
1: कोई
0: मैं
1: पच्चीस
0: बोल
1: छी
0: रही हूँ
1: होते हैं,
0: आपको।
1: 25 छी होते तो उनको पानी रखना चाहिए, और जानवर होते हैं, बे जानवर जवान होते हैं तो उनको ख्याल रखना चाहिए, चारा पानी टाइम से देना चाहिए।
0: जी मैंने बोल रही थी, जो आपके इधर बहुत गर्मी है ना,
1: हाँ, मेरे इधर
0: तो
1: बहुत गर्मी है मैडम
0: डाब
1: जी।
0: का पानी, इलेक्ट्रोल,
1: हाँ
0: वो सब ज़्यादा पिएगा,
1: हाँ और
0: वो
1: मेरे
0: सेहत के लिए
1: तापमान
0: बहुत
1: मेरे
0: अच्छा है।
1: मेरे
0: और वो जो सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक होते हैं ना, उससे भी
1: अरे
0: आपको
1: मैडम
0: आराम
1: जी, मेरा इधर
0: मिलेगा।
1: तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हाँ, बहुत तापमान गिर गया है, बहुत गर्मी पड़ रही है, मजबूर है, पशु पशु फेंपी डाल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। वो आपके आपके मुँह से, आपके इधर मौसम कैसा है, कैसी बारिश हो रही, कैसा क्या,
0: हाँ
1: कैसा
0: बारिश
1: माहौल
0: बारिश हो रही है इधर,
1: है?
0: बहुत बारिश हो रहा है इधर।
1: बहुत बारिश हो रहा है, तो मैडम जी मैं आपके इधर से मेरे इधर बारिश भेज दीजिए,
0: हाँ हाँ
1: क्योंकि
0: भेज
1: यूपी में
0: भेज
1: यूपी ठंडा
0: भेज
1: ठंडा हो
0: देंगे
1: गया है,
0: हम।
1: आपको यूपी
0: हाँ
1: तो बहुत गर्म है।
0: हाँ भेज देंगे। ठीक है, सुनिए आपका मनपसंद गाना।
1: और मैडम जी दोस्तों को नाम लेना चाहता हूँ,
0: हाँ जी
1: दोस्तों को दाओ ऐड करना चाहता हूँ, दोस्तों को
0: हाँ
1: पहले
0: बोलिए बोलिए।
1: सबसे पहले आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम तो पता नहीं है क्या है, आपसे मेरी बात हो रही है तो, और तुम्हारा आपको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, राकेश हैं, अवनाश हैं, और उसका नाम क्या, राजेश हैं, विनोद हैं, रिंकी हैं, पिंकी हैं, सीमा हैं, सुनीता हैं, टीना हैं, रिम रिम हैं,
0: ठीक
1: और
0: है
1: सबना
0: ठीक है।
1: बाकी हैं, जितने तमाम सुनने सबको वहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ
0: जी
1: मैडम
0: जी
1: जी।
0: जी जी जी जी सभी के साथ सुनिए आपका मनपसंद गाना। बहुत
1: जी
0: बहुत
1: धन्यवाद मैडम
0: शुक्रिया,
1: जी,
0: जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: जहाँ जुड़े रहेंगे आपके साथ जुड़े रहेंगे, जुड़े
0: धन्यवाद
1: रहेंगे।
0: धन्यवाद।

0: শ্রোতা বন্ধুরা, সম্প্রচারিত হচ্ছে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ। ফিরে আসছি সংবাদের পর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर है, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध

0: उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: শ্রোতাবন্ধুরা, ফিরে এলাম সংবাদের পর। আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি হিন্দি গানের শ্রোতাবন্ধুদের অনুরোধের আসর। হ্যালো অনুরোধ, দেখা যাক কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। নমস্কার, হ্যালো অনুরোধ।
2: নমস্কার,
1: বলুন।
2: হ্যাঁ, আমি হাওড়া গোবিন্দপুর থেকে বলছি।
1: স্বাগত আপনাকে অনুষ্ঠানে।
2: হ্যাঁ,
1: ভালো আছি।
2: আর আজকের কোডটা হচ্ছে বর্তমান যুগে ভালো সুস্থ থাকার লড়াই।
1: বর্তমান যুগ সুস্থ থাকার লড়াই, ঠিক আছে।
2: হিন্দি ছবি থেকে, সারাক ছবি থেকে, তুমি আপনা বানানে কি কসম খাই হে।
1: ঠিক আছে,
2: সারাক ছবি থেকে।
1: হুম হুম হুম,
2: এই গানটা দিদি পাওয়া যাবে তো?
1: নিশ্চয় নিশ্চয়। ঠিক আছে লালন ভাই, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার পছন্দের গান।
2: নমস্কার, ভালো থাকবেন।
1: নমস্কার।

0: हेलो,
1: नमस्कार। हेलो अनुरुद्ध।
0: नमस्कार दीदी, आपका सीक्रेट कोड है आज वर्तमान युग में स्वस्थ रहने का उपाय।
1: जी बोलो।
0: तो मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
1: स्वागत आपको हमारे कार्यक्रम
0: में। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
1: हेलो,
0: आपकी आवाज बहुत कम आ रही है दीदी।
1: आप सुनाई दे रहा है?
0: हाँ दीदी, आप सही सुनाई दे रहा है।
1: ओके,
0: तो दीदी हम कहना चाहेंगे कि सभी को अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और काम बाद में करना चाहिए, पहले खाना पीना। नहीं तो दोस्त वगैरह सोचते हैं कि चलो अपन बाद में काम कर लेंगे, पहले मतलब खाना बाद में खा लेंगे, पहले काम कर लेते हैं। खाना पहले खाना चाहिए, काम बाद में करना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: तो दीदी मैं फिल्म का नाम बताऊं क्या आपको?
1: हाँ बोलिए बोलिए
0: जी। आप सुना दीजिए सुहाग फिल्म का, इसमें से कोई सा गीत सुना दीजिए।
1: कौन सा गीत?
0: इसमें से कोई सा सुना दीजिए। दो सुहाग है, एक अमिताभ बच्चन वाली है, एक अक्षय कुमार जी वाली है। इन दोनों में से कोई सा गीत मिल जाए, आप दोनों में से किसी कोई सा गीत सुना दीजिए।
1: गाने का बोल याद नहीं है आपको?
0: जी है ना, अक्षय कुमार वाली का तो है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
1: अच्छा, फिर अमिताभ बच्चन वाला?
0: अमिताभ बच्चन वाला है शायद तेरी रब ने बना दी जोड़ी, ऐसा कुछ गाना है।
1: ठीक है,
0: मिल गया दीदी?
1: जी जी जी जी
0: तो दीदी मैं कुछ दोस्तों को याद करना चाहूंगा।
1: बोलिए बोलिए।

0: हेलो।
1: हाँ बोलिए।
0: त्रिपुरा से बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी हैं, उल्टीदास दीदी हैं, गोपाल महाजन जी हैं, विश्वजीत जी हैं और सुमन मोहरी जी हैं। इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, और आपको डेलीकेट रहेगा।
1: गोपाल महाजन त्रिपुरा से हैं या आपके उधर
0: हाँ
1: से?
0: जी जी
1: कहाँ से है वो?
0: त्रिपुरा से या फिर बिलोनिया से होंगे।
1: अच्छा ठीक है ठीक है
0: जी
1: ठीक है। सारे दोस्तों के साथ सुनिए मनपसंद गाना।
0: ओके दीदी।
1: थैंक यू।

0: বিভিন্ন শিল্পীর পরিবেশনায় কম্প্যাক্ট ডিস্কে এতক্ষণ শুনলেন নজরুল গীতি। আকাশ বাণী কৈলা শহর সম্প্রচারিত হচ্ছে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি ও ইংরেজি সংবাদ, এরপরে মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতী।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने

को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। महिला वर्ग में अमरीका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन के रूप में हिस्सा ले रही है। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सिलो डेमोलिन के साथ खेलेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।